0: उन्हें सही मिले देसु निंग योगे वो माल खाते चेतो जा
1: चेसा लेला मारी
0: रान लेला भी योमारी योशो तस्सेम लेर पाप सोआ क्योंस आजा सेजे कसकल सिंगमालों सला